0: हेलो,
1: हेलो,
0: बोला
1: काले मामी ओली उठिया
0: अनो मचारा मकाने समरो तो सो है बुगेरी
1: अबे बुगेरी मुनी मुठिया
0: तुरी ये गालों
1: मकानी का वांगा हरी हाथिया
0: अरे वानो
1: हकानी का ही वो हकानी का गाली दे
0: मना मुझे एक मकांबो
1: जीरे मु
0: आमे इनो
1: ओगा कसा
0: इनो नामा
1: आमीना
0: आमीना सेवो
1: Mchala makanika. Oh, gumakan ngaku ndajau kanika.